0: After remaining on the run for over 50 hours, Kalyan Besla has been arrested and brought to Gurugram. Police tracked him using CCTV footage and informed multiple teams, while biker Sia Chauhan claims he intentionally hit her vehicle and fled from the scene. The era of 100% free UPI is soon going to be over. From October 15th, UPI merchant payments above 2,000 will attract 0.4% merchant discount rate. This fee has been capped at Rs. 300 per transaction. However, all person-to-person UPI payments still remain free. Meanwhile, in Punjab, the Punjab Congress has stepped up its attack on the Aam Aadmi Party government over the death of Gulzar Singh, who allegedly died by suicide after he was allegedly humiliated for confronting the minister Harpal Chima. Congress seeks resignation of the Punjab minister. 52-year-old dies after speeding car hits motorcycle in Faridabad. The SUV driver allegedly fled after the crash, while police seized the vehicle and identified the suspect. All right, let's take you this morning through the top stories of the hour. After an over 50-hour-long manhunt, Gurugram police have arrested the prime accused, Kalyan Besla from Dausa in Rajasthan, following a viral road rage incident involving a woman biker. However, yet again, the accused made an attempt to escape, this time from police custody. Police say the accused attempted to flee from police custody on the pretext of going to urinate. During the escape attempt, he fell and sustained minor injuries. He was then taken to the hospital and provided first aid. Last evening, he was brought to the Gurugram police station. Not just that, the police have even further added an attempt to murder charge against him after studying the CCTV and the dash cam footage. Meanwhile, the victim biker CR reacted to these developments and demanded strict action against all of the accused in this particular case.
1: देखिए जो भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ संडे मॉर्निंग जो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और जो भी चीजें मैंने पर्सनली फेस करी और मेरे साथ करी गई वो मैंने उनको अपना सारा बयान दिया है कैसे मुझे बीच में हरास करा गया था चेस करा गया और इंटेंशनली मुझे मारा गया जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी और सारे मैंने स्टेटमेंट वहां पे दे दिए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड अरेस्ट करना भी कोई एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता अगर आज वो उन्होंने अरेस्ट करा है अगर किसी ने तीन दिन बाद उनकी बेल करवा दी तो वो एक एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट अगर दो लोगों को कराए दो और लोग थे गाड़ी में उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की अगर आज उनको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे और आगे सेम केसेस होते रहेंगे
2: कल्याण ने अपने एक इंटरव्यू अगर गिरफ्तार कराया तो बहुत अच्छी बात है अभी मेरी नॉलेज में नहीं है मीडिया के थ्रू मेरे को जानकारी आई है कि उसको राजस्थान से पकड़ा है तो पुलिस अच्छा काम कर रही है सेड कर रही है और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए जिस प्रकार का ये क्राइम था ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते मतलब हीट कर रहे हैं
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया
4: सर मैंने बता दिया जी 164 की स्टेटमेंट होती है वो उसमें सब बता दिया गया है और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए हैं 307 IPC लगाए गए और 354 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने
4: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था तो शुक्र है भगवान की वो बच गई बट कुछ भी हो सकता था
0: All right, we have some breaking news coming in this morning. Let's take you through it. The Meta India MD and the head have been summoned yet again. The child rights panel has summoned Meta bosses and the summon has occurred over the CSAM allegations. That's right, Meta to report child abuse cases. The National Commission for Protection of Child Rights has issued a notice to Meta platforms on the 3rd of July 2020.

0: Hello and welcome. My name is Reeve Kaur Sahani. You're watching NDTV. Well, you've got an action-packed show this morning, but let's first take you through the headlines of the hour. In an exclusive interview with NDTV, Bill Gates has sounded a warning over the rapid transformation AI could bring. A report from the Gates Foundation has raised concerns about safety, control, and the possibility of AI moving faster than humans can adapt. After remaining on the run for over 50 hours, Kalyan Besla has been arrested and brought to Gurugram. Police tracked him using CCTV footage and informed multiple teams, while biker Siya Chauhan claims he intentionally hit her vehicle and fled from the scene. The era of 100% free UPI is soon going to be over. From October 15th, UPI merchant payments above 2,000 will attract 0.4% merchant discount rate. This fee has been capped at Rs 300 per transaction. However, all person-to-person UPI payments still remain free. Meanwhile, in Punjab, the Punjab Congress has stepped up its attack on the Aam Aadmi Party government over the death of Gulzar Singh, who allegedly died by suicide after he was allegedly humiliated for confronting the minister Harpal Chima. Congress seeks resignation of the Punjab minister. 52-year-old dies after speeding car hits motorcycle in Faridabad. The SUV driver allegedly fled after the crash, while police seized the vehicle and identified the suspect. All right, let's take you this morning through the top stories of the hour. After an over 50-hour long manhunt, Gurugram police have arrested the prime accused, Kalyan Besla from Dausa in Rajasthan, following a viral road rage incident involving a woman biker. However, yet again, the accused made an attempt to escape, this time from police custody. Police say the accused attempted to flee from police custody on the pretext of going to urinate. During the escape attempt, he fell and sustained minor injuries. He was then taken to the hospital and provided first aid. Last evening, he was brought to the Gurugram police station. Not just that, the police have even further added an attempt to murder charge against him after studying the CCTV and the dash cam footage. Meanwhile, the victim biker CR reacted to these developments and demanded strict action against all of the accused in this particular case.
1: देखिए जो भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ संडे मॉर्निंग जो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और जो भी चीजें मैंने पर्सनली फेस करी और मेरे साथ करी गई वो मैंने उनको अपना सारा बयान दिया है कैसे मुझे बीच में हरास करा गया था चेस करा गया और इंटेंशनली मुझे मारा गया जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी और सारे मैंने स्टेटमेंट वहां पे दे दिए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड अरेस्ट करना भी कोई एक सैटिस्फैक्शन नहीं होती है जब तक उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता अगर आज वो उन्होंने अरेस्ट करा है अगर किसी ने 3 दिन बाद उनकी बेल करवा दी तो वो एक एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट अगर 2 लोगों करा है 2 और लोग थे गाड़ी में उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की अगर आज उनको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे और आगे सेम केसेस होते रहेंगे
2: कल्याण ने अपने एक इंटरव्यू गिरफ्तार करा है तो बहुत अच्छी बात है अभी मेरी नॉलेज में नहीं है मीडिया के थ्रू मेरे को जानकारी आई है कि उसको राजस्थान से पकड़ा है तो पुलिस अच्छा काम कर रही है सेड कर रही है और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए जिस प्रकार का ये क्राइम था ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते मतलब हिट कर रहे हैं
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया
4: सर मैंने बता दिया जी 164 की स्टेटमेंट होती है वो उसमें सब बता दिया गया है और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए हैं 307 IPC लगाए गए और 354 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने
4: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था, तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था।
0: All right, we have some breaking news coming in this morning. Let's take you through it. The Meta India MD and the head have been summoned yet again. The child rights panel has summoned Meta bosses and the summon has occurred over the CSAM allegations. That's right, Meta to report child abuse cases. The National Commission for Protection of Child Rights has issued a notice to Meta Platforms on the 3rd of July 2026, taking suo motu cognizance of a BBC iMedia report alleging advertisements related to child sexual exploitative and abuse material, also remember known as CSAM. The NCPCR has sought an explanation from Meta in the matter and Meta submitted its response a week later. The NCPCR has since decided to constitute a formal inquiry to determine the facts of the case. In continuation to, in fact, this inquiry, once again, it has now summoned the managing director and head of Meta India with a hearing scheduled for today, the 16th of September. Now, NCPCR's persistent follow-up on the CSAM matter has prompted Meta to revise its policy on reporting child sexual abuse cases. Meta, remember, has been reporting such cases to the Indian Cyber Crime Coordination Centre. So, an important update that we're getting yet again, this is, remember, with regard to CSAM allegations. In that context, we're understanding that Meta top bosses have now been summoned. Now, an important update that we're tracking on this case, as we're learning, as the National Commission for Protection of Child Rights has issued yet another notice

0: no espantecer.
1: देश का टायर जेके टायर।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।

0: cuando está de ser.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: केसरी त्यौहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: been sent to today's custody. Let's go across now to Akhil for more on this story. Give us all the details, Akhil, what took place in court.
1: Well, Divya, if you see what we have seen that this very afternoon, the accused Kalyan Besla and his cousin, both of them were produced in court, where what we have seen that the police team, the investigative team, has argued regarding the police remand for at least 2 days. And what we have seen that the judge Nidhi Beniwal in this case has granted 2 days of police custody. So the police team has got the 2 days of police custody. Now they are going to recreate the entire scene for further investigation. Because if you see, initially what we have seen that based on the evidence given by CI in this case, the investigation began. And if you see, according to our sources, police sources, what we have got to learn that Sia also submitted a pen drive. She has documented everything. She has given a pen drive. There were several videos which have been given to the police in order to substantiate her case. And based on those evidence, what we have seen that section 109 was pressed in, which is amounting to murder. And after that, what we have seen that today, this afternoon, the court has decided that 2 days of police custody will be granted. And after that, if you see at this stage, the police team is going to interrogate both the individuals regarding their intent part, that why they deliberately wanted to attempt killing of Sia. So on that part, the investigation is going on by the Gurugram police.
0: All right, Akhil, thanks so much for joining us with those details. So let's take you through this case. The Gurugram hit and run accused Kalyan Besla being sent to 2 days police custody. Now, the police say that they intend to reconstruct the crime scene. Besla was arrested, remember, after an over 50-hour-long manhunt from Dausa in Rajasthan following the viral road rage incident involving the woman biker. Besla, along with another accused, are now in police custody and have been produced in court. They will be produced again on the 18th of September. Questions are being raised on the change of hairstyle of Besla as well during custody. Visuals show him in a shorter hair cut during the custody than he was when he was arrested. Now, according to sources in the police, that it was they who cut Besla's hair. The police cut hair of major criminals is what the police have revealed, or those involved in heinous crimes after arresting them. And so that is the reason for that change in hairstyle.
2: देखिए जो भी बयान उनकी तरफ से आए हैं उनके लॉयर और जो भी मैं कल से ट्विटर इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ उनके सपोर्टर्स के बयान तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है अपनी जस्टिफिकेशन देने की जो चीज़ें मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुई है इनफैक्ट एक कैमरा में नहीं है वो मल्टीपल कैमरास में रिकॉर्ड हुई है जो मेरे फेलो राइडर पीछे चल रहे थे जब वो रेड लाइट पे रुके कैसे वो भागे और मुझे नहीं समझ आता वो कैसे ये बयान दे सकते हैं कि गलती से टक्कर हो गई मुझे तो पता नहीं था लड़की है तो ये सारे बयान उनके झूठे बयान हैं और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मेंटालिटी है क्या उनकी मंशा थी किस थॉट से वो मेरे को चेस कर रहे थे एंड इंटेंशनली मार के गए वो तो पूरे देश ने देखा है उस वीडियो में कि कैसे वो इंटेंशनली मार के वहाँ से भागे हैं
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया
4: सर मैंने बता दिया 164 की स्टेटमेंट होती है वो उसमें सब बता दिया गया है और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए गए हैं 307 IPC लगाए गए और 354 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने
4: सीए ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है वो इंटेंशनली मारा गया है और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई बट कुछ भी हो सकता था
3: कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश की गई
5: एक कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने पुलिस ने अपना एक एप्लीकेशन रिमांड एप्लीकेशन फाइल किया है कि उनको 2 दिन का पुलिस कस्टडी चाहिए और वो सीन क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं और अदर को एक्यूज के बारे में उनको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको हमने अपोज़ किया है हमने जो मेन सेक्शन 109 उन्होंने लगाया है उसको अपोज़ किया है कि वो कोई इंटेंशनली इसमें हमारा कोई रोल नहीं है रैश एंड ड्राइविंग का वो जो केस है वो अवेलेबल है खाली इसको नॉन अवेलेबल बनाने के लिए पुलिस ने ये ऐड किया है एड ऑन किया है उसके बारे में कोर्ट ने हमारी जो पूरी प्रेयर सुनी है अभी कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी
3: आपने विजुअल्स देखे होंगे CCTV के उसमें इंटेंशनली जो है डेलिबरेटली जो है वो उस लेन से उसके पास गाड़ी आती है चार चक्की
5: सब देखिए वो सब अभी

मैं हूं राजीव खंडेलवाल और स्वागत है आपका वंदे भारतम में, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। नब बुलाते हैं मार्केट के सुपर हीरोज और वंदे भारतम के मेंटोर्स को। एक छोटे से बाइक टैक्सी स्टार्टअप से शुरुआत करके $3 बिलियन का मोबिलिटी पावर हाउस बना दिया। आज 400 से ज्यादा शहरों में हर रोज करोड़ों राइड्स के साथ इन्होंने मोबिलिटी की परिभाषा बदल दी और 90 लाख कैप्टन्स को रोजगार का नया रास्ता दिया।

0: All the best. Course, please. तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले इनोवेटर से. प्लीज वेलकम नोएडा उत्तर प्रदेश से वी जीनोमिक्स इंडिया के इनोवेटर्स डॉक्टर रहीला सरदार और मिस्टर समीर मलिक. हाय वंदे भारत में आपका स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये इस इनोवेशन पे कितने सालों से काम कर रहे हैं.
1: चार साल से.
0: सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? लेट्स पुट दिस.
1: सो स्ट्रगल ये थी कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा बच्चा 4 महीने का था. कोविड के टाइम पे मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. डॉक्टर ने बोला जेनेटिक टेस्ट करना है. आई वॉज इन उत्तराखंड तो मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे तो जेनेटिक टेस्ट नहीं होता. मैं PhD भी कर रही थी. अनफॉर्चुनेटली मैं PhD ही जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रही थी. ठीक है, तो जब मैं आई फिर मैंने डिसाइड किया. जब मेरा टेस्ट हुआ तो 30-40 दिन वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी. एक तो कोविड था, सेकंड वेव थी, डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा. तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा. तो उस टाइम PhD का काम तो हो ही गया था क्योंकि मैंने 3.5 साल में अपना PhD का काम कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद उस 40 दिन के अंदर मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. लेकिन उस जब होता है ना कि आप जब बताओ फैमिली को, उनको होता है कि इतना छोटा बच्चा है, 4 महीने का है, ब्रेस्ट फीड पे है, तुम क्या राहिला, यू आर ओवर एम्बिशियस. सो ये सारी चीज़ें रही. बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग थे. उन्होंने कहा देखो आप एक बच्चे के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे हो, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है. आई विल सपोर्ट यू. जबकि PhD के बाद मुझे पोस्ट डॉक स्टैनफोर्ड से आया, एक जॉब भी दी काफ़ी अच्छी US में. बट आई डिसाइडेड आई विल बी देयर. मेरा मानना ये, देखिए ऐसी चीज़ बनाइए कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वाले आपको खुद बनाए, ना कि मुझे जाना पड़े. सो मेरा मिशन है कि मैं इसको सॉल्व करूँ.
0: इतना कुछ सहन किया आपने उसके लिए आप इस मंच पर खड़ी हैं. ओके, सो फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विद अ स्माइल. आपकी पिच रेडी है?
1: या बिफोर शी स्टार्ट्स कैन आई गिव हर अ हग? या आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर पैशन.
2: थैंक यू.
1: गुड लक.
2: डू वेल.
0: आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: नमस्ते. क्या आप ये बच्ची देख रहे हैं? ये बचपन से स्माइल नहीं करती थी, चलते चलते गिर जाती थी, पैरों में दर्द की कंप्लेंट करती थी. आज 4 से 5 साल बाद मल्टीपल मिस डायग्नोसिस होने के बाद इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि इसको एक डेडली जेनेटिक डिजीज है. बात यहाँ नहीं रुकती. डॉक्टर से आंसर मिलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 साल और बची है. वर्ल्ड में ऐसे 35 करोड़ लोग हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ अफेक्टेड हैं, और इंडिया में आप गेस करिए कितना है? 10 करोड़ लोग हैं जो कि अफेक्टेड है. और ज्यादा दुख की बात तो यह है कि 7 करोड़ सिर्फ बच्चे हैं. मेरी PhD खत्म होने के बाद स्टैनफोर्ड में ना जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे इन पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना है थ्रू अ सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेलरेट द डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी एज वेल. ऐसे स्टार्ट हुई वी जीनोमिक्स की. अप्रैल 2022 में मैंने वी जीनोमिक्स स्टार्ट किया. इसमें मेरे साथ पार्टनर किया डॉक्टर प्रीति गुप्ता लाल जो कि US से हैं, एंड शी वर्कड इन फार्मा इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 35 years एंड को ओन 150 US पेटेंट. सो वी बोथ जॉइन टुगेदर एंड स्टार्टेड दिस कंपनी वी जीनोमिक्स. हमारा मिशन है इस बच्चों और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना ताकि इनको फास्टर डायग्नोसिस और इवेंचुअली फास्टर ड्रग्स डेवलप हो सके.
3: मेरा नाम है समीर, को-फाउंडर ऑफ वी जीनोमिक्स. मैं आता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड. तो जब मैं डॉक्टर राहिला और डॉक्टर प्रीति से मिला तब आई रियलाइज दैट दिस इज द टीम वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड वी कैन मेक इट अ ग्लोबल स्टेज कंपनी. आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ रही है, राइट? हम उसको कैंसर में देखते हैं, रेयर जेनेटिक डिजीजेज में देखते हैं, IVF में देखते हैं. आज लैब्स और हॉस्पिटल बहुत सारी करोड़ों स्पेंड करके मशीन्स खरीद रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि एक जेनेटिक टेस्ट में 8 से 80 GB डेटा जनरेट होता है, और उससे अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है उसका मतलब है कि जैसे ये यहाँ भूसा रखा है उससे आपको ये निडल ढूंढ के निकालनी, राइट? इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो है, मैनुअल है और फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंडेंट है. और इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया देश का अपना विजन 23। विजन 23 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी मशीन से डीएनए डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको कोरिलेट करता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्ड करके ये सारा काम केवल आधे घंटे में कर देता है। हमने 3 साल पहले 3.15 करोड़ रेस किए, 13 लोगों की टीम बिल्ड की और पूरी R&D करके ये सॉल्यूशन इसी साल लॉन्च किया। केवल 4 महीनों में आज हमारे पास 80 से ज़्यादा B2B यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ के POs क्लोज कर दिए हैं और 2.5 करोड़ के POs पाइपलाइन में हैं।
1: हमारी आस्क है 5 करोड़ रुपए आपसे और आपके 1-1 घंटे की मेंटरशिप, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को एक देश का ऐसा स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे ना कि सिर्फ डायग्नोसिस बट ड्रग डिस्कवरी फास्ट हो और पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।
2: Firstly, 2 strong female founders I love. You know, to hear your story about having to manage both motherhood and running this business is very inspiring and truly heartwarming. So congratulations on that. How do you price it?
3: We built a pure SaaS model. Now, all of us are tech entrepreneurs. We understand SaaS model, but in genomics, there was no SaaS model. If you go to any platform, you will not be able to figure out the pricing. So what we did is we put a pricing. Right now the pricing is live on our website. So any small or medium lab that runs as a pure software play, they come in, that becomes our top funnel. When they come in, that is priced at around 2000 to 2500 rupees. And when they come in, when they start running the test, that's when we do the commercial contract with them.
4: What I can see here, you've tested on or you've trained it on around 1500 samples, is that correct?
1: Right, we have processed till now 1,500 samples.
4: Oh, you have processed.
1: Yeah,
4: but
1: through this.
4: What is your benchmark?
1: We are already from day one, we are working with the big hospital like AIIMS Delhi, PGI. We scrape all the big database from NIH. वहाँ से हमने काफ़ी सारे databases लिए different disease. तो ऐसे हमने 100 sample gather किए और उसमें हमने validation establish किया. So we have received a 99.1% accuracy in that.
5: First of all, you have taken a very, very apt problem for the country. I have a couple of people in my close circle who got detected with cancer very, very late. I mean, it's too hard. I think the place that you have chosen is great, and the kind of team that you have put up, I think all boxes are ticking for me. I think happy to mentor and see if we can if I can also write a check. Maybe let's do this. Let me write a check.
1: Oh, thank you.
5: I'm writing them a check without discussing about the valuation.
1: Okay.
5: Of 50 lakhs.
1: Thank you so much.
0: That's huge.
2: And before you go, we would also like...
0: You're also getting Vande Wings.
1: Oh, okay.

0: आप जानते हैं कि अगर आप टॉप 5 विनर्स में आए तो हम आपसे फिनाले एपिसोड में वापस मिलेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड यू कैन गो एंड सेलिब्रेट.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: कोर्स प्लीज. तो हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं ना, उनका जो इनोवेशन है वो काफी भारी भरकम है. सो प्लीज वेलकम केरला से ऑटोजेन बॉट के इनोवेटर विपिन केवी.

0: course, please.
1: आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ यंग माइंड्स और बोल्ड आइडियाज जो रखते हैं भारत के फ्यूचर को बदलने का जज्बा। जयपुर से मैफकिन रोबोटिक्स,
2: आज भी इंडिया में शिप इंस्पेक्शन और क्लीनिंग का काम डाइवर असिस्टेड टूल्स द्वारा किया जाता है। हम इस पूरे प्रोसेस को चेंज करना है। हम बना रहे हैं नोहा और अंगद, हमारी ऑटोनोमस रोबोटिक फ्लीट।
1: संभाजी नगर से माई पेरो,
3: आपके सबसे प्यारा दोस्त, आपका वफादार डॉग अगर बीमार हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। माई पेरो एक स्मार्ट कॉलर जो टेम्परेचर, हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही ओनर को अलर्ट करता है।
1: जयपुर से रीग्रिप इंडिया,
4: टायर एक कचरा नहीं है, इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कलेक्शन से लेके एक टायर का रिसाइकलिंग तक पूरी जर्नी हमने एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करी है।
1: इरोड से हैथोर रॉकेट्स,
5: टुडे कंपनी स्पेंड मोर देन 7 प्लस इयर्स बर्निंग हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स टू अटेम्प्ट देयर फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च अटेम्प्ट। वी आर सॉल्विंग दिस एट हैथोर रॉकेट्स। We are building high performance liquid rocket engines for launch vehicles, in space mobility applications and strategic defense applications.
1: Jinke high performance liquid rocket engine ne kiya Mentos ko impress aur unhe mile Srishti Adani se Vande Wings.

0: जी और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
1: And we bring in our product that's called Baidu. Everybody taught me that you are okay to fall. It's not disability that should put you out. It is the ability and the confidence inside you should bring you out.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: With SBI Celebrations Unlimited, make this Ganeshotsav extra special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाह मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
2: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: A generation with questions.
4: The starry and the whole glamorous side of it.
5: As I said, like, I can't empathize with it.
3: Unconventional.
6: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
3: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
7: Aspirational.
3: The ideas. The issues.
8: You really are.
3: The young view.
9: Public perception.
3: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: Dr. Roma, manual winding. Char logon ke paas hai.
12: Kuch isse bhi anokha.
11: Kamla pasand, sirf ek anokha swad. Kamla pasand pan masala.
13: Gold rush on the field.
14: India's champions are ready.
13: The battles and the breakthroughs, from the arena to the podium.
14: Asian Games 2026.
13: Go for glory, only on NDTV.
15: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
16: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
17: Higher end, check the audio.
15: Let's do it. Let's start.
18: Breaking story, we're jumping straight into it.
15: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
19: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
15: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
20: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
19: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
15: The line of control, Shivarur, NDTV.
21: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw.
22: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
23: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार, तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: I think you've got support from almost everyone. Thank you so much for coming here. All the best.
1: Thank you.
0: Pause, please. Let's get our next innovator on the stage. Please welcome Sambalpur, Odisha se Space Fields Private Limited ke innovator Apurva.
2: Namaskar, sir.
0: Hi, Apurva. Kaise hain aap?
2: All well, sir.
0: Welcome to Vande Bharat.
2: Thank you so much.
0: Ready with the pitch?
2: Sure.
0: Mentors are right there. And your time to shine starts now.
2: Okay. Namaskar, mentors. Mera naam hai Apurva Masuk. I am the founder and CEO of Space Fields. मेंटर्स, आपके फोन्स में जब बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है या स्क्रीन पे स्क्रैचेस हो जाते हैं तो हम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं, हम उसकी बैटरी को रिप्लेस करके या नया डिस्प्ले लगा के वो नई जैसी हो जाती। कुछ ऐसा ही करती हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ। कोई भी रॉकेट या मिसाइल कितना दूर जाएगा यानी कि रेंज, कितना तेज़ी से जाएगा यानी कि स्पीड, कितना वेट कैरी कर पाएगा यानी कि पेलोड, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी उसकी फ्यूल पे। ये फ्यूल को हम प्रोपेलेंट या प्रोपल्शन कहते हैं। ये प्रोपेलेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि दिवाली के आतिशबाजियों में यूज़ होने वाला बारूद। दिवाली के पटाखे जब आप एक दो साल यूज़ ना करो तो वो ख़राब हो जाती हैं। कुछ उसी तरह ये रॉकेट्स और मिसाइल्स अगर 10-15 साल तक यूज़ ना हो तो उसकी प्रोपेलेंट एक्सपायर हो जाती है, नतीजा पूरी मिसाइल बेकार। भारत में आज कई लाखों करोड़ों रुपए के ऐसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड आर्मामेंट हैं जो ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे निर्भर हैं। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन दिस फील्ड। बट ये सब स्टॉक में रखना भी बहुत ज़रूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। पर जब सालों पुरानी खरीदी हुई डिफेंस स्टॉकपाइल की प्रोपेलेंट्स एक्सपायर कर जाए तो टैक्स पेयर्स के अरबों रुपये दांव पर लग जाते हैं। टैक्स पेयर्स के इन्हीं पैसों को बचाने के लिए और भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी को बूस्ट करने के लिए हमने शुरुआत की स्पेस फील्ड्स। स्पेस फील्ड्स में हम कई ऐसे नए सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे आरएनडी करते हैं जो एग्जिस्टिंग रॉकेट या मिसाइल की एक्सपायर्ड प्रोपेलेंट को रिप्लेस करके देश की डिफेंस इन्वेंट्री में नई जान डाल देती है। हमारे प्रोपेलेंट से मिसाइल्स की रेंज और स्पीड बरकरार रहती है, इनफैक्ट अपग्रेड भी होती है, पुराना स्टॉक दोबारा यूजेबल होता है और देश और देशवासियों के अरबों रुपये की बचत भी होती है। एज अ यंग कंपनी, वी आर 4 years old, हमने काफ़ी प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में किया है एंड आर्म फोर्सेज का भरोसा भी हासिल किया है। आज स्पेस फील्ड्स के पास 50+ मेंबर्ड R&D टीम, 30+ पेटेंट्स, 15+ डिफेंस एंड एरोस्पेस कस्टमर्स एंड 45,000 स्क्वायर फीट R&D फैसिलिटी भी है। हमारा विजन है कि हम अपने इनोवेशन से भारत के डिफेंस एसेट्स को ट्रूली इंडिजिनस, सॉवरेन एंड सस्टेनेबल बनाए। ओडिशा के छोटे से शहर से शुरू हुआ ये सफर आज देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत और आत्मनिर्भर करने का संकल्प बन चुका है। एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस चैलेंजिंग एट क्रूशियल मिशन, वी आस्क फॉर योर सपोर्ट एंड पार्टनरशिप एंड अ फंडिंग ऑफ 8 crores। थैंक यू सो मच।
3: तो अपूर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स ऑन योर जर्नी एंड इनफैक्ट वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स इन यू नो इन स्पेस डिफेंस एंड यू हैव चोजन अ वेरी यूनिक यू नो वेरी फोकस्ड यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी you know as we all know like it's a very need of the hour for the whether it's the forces or like all the customers you serve. So I'll ask a technical question and explain your technology, matlab what is different from a regular solid propellants or regular rockets and also on a global scale how do they compare.
2: Jaise fuel mein aasan bhasha mein bole mileage to kitna deti hai gaadi, to kuch uska comparable parameter propellant mein specific impulse which is ISP, to koi bhi rocket का डिज़ाइन अराउंड ISP होता है, तो हमारे प्रोपेलेंट से 20-30% इंक्रीज इन बैलिस्टिक परफॉर्मेंस या ISP मिलती है। यूजुअली हम कस्टमर बैकवर्ड्स हैं तो जैसे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती है हम उस तरह से प्रोपेलेंट केमिस्ट्री खुद की डिज़ाइन करते हैं। कई बार जैसे डिफेंस में रिक्वायर्ड होती है स्मोकलेस प्रोपेलेंट कि कोई ट्रेल ना हो प्रोपेलेंट पे, सो दैट IR ट्रैकिंग एटसेट्रा कैनॉट बी डन, तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड। तो करेंटली हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंसी है कि हम एनर्जेटिक्स में या प्रोपेलेंट केमिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी R&D करते हैं एंड देर इज़ नो कंपेरेबल एस्टैब्लिशमेंट इन द कंट्री दैट डज इट।
3: अमेजिंग। व्हाट काइंड ऑफ यू नो मेंटरशिप और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू थिंक लाइक आई कैन प्रोवाइड फॉर स्पेस फील्ड्स।
2: 2020 व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, ISRO साइंड एन MOU विथ आवर इंस्टीट्यूट to fund the project with 50 lakhs in grants. That time, Dr. K. Sivan, he was the chairman. And the same month, two, three things happened. May 2020, I remember, you raised a massive Series A, $11 million. And space privatization followed quickly. So I think those two, three things, it was like a convergence. And when I was graduating, I was, I have to do this. So that has been my journey. So definitely you are someone who has been there, done that in this field. Now we are going in our early growth phase. And in India, like we say, risk capital, especially for growth stages, is very, very difficult to mobilize. So I really like your support in that.
3: Absolutely, absolutely. Like I always say, like, you know, raising capital in our sector is like rocket science. And then, you know, really happy to help out. And also, like, you know, if you know, you talked about policy, you know, regulation challenges, you know, anything you think, you know, which you want to take it to the center level, you know, to resolve it, let me know. Definitely happy to, you know, work with you on unblocking those bottlenecks and you know, see how we can work together on that.
2: Thank you so much, sir. Very generous of you.
4: I think I really like the focus that you have on silver bullet. Hey, I want this. I want to save the cost for defense, and finding one that niche will actually help you scale faster, in my opinion.
2: So this is a field where there is no other startup competitor. So it's a field that is largely occupied by legacy incumbents, and we are the only startup in this field. Very recently, we have secured 121 acres in Andhra Pradesh in Anantapur, where we plan to set up our own propellant manufacturing plant and scale up the production capacity to meet the armed forces requirements.
5: But great work, and I would like to give you the one thing.
6: Fabulous.

0: पीस।
1: और आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ ऐसे इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का फ्यूचर लिखना चाहते हैं। गुरुग्राम से ड्रोनवर्स, जो इंडिजीनियस ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से भारत की सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। इंदौर से इलेक्ट्रिका एनर्जी, जो एआई के जरिए बैटरीज को स्मार्टर और सेफर बना रहा है। ग्रेटर नोएडा से वोल्टवर्क्स, जो इंडिजीनियस ईवी टेक्नोलॉजी के साथ भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पावर दे रहा है। मोरबी गुजरात से रन मुक्ति ग्रिड टेक्नोलॉजीज, जो भारत के पावर ग्रिड्स को सिक्योर बना रहा है। और नोएडा से इनक्रेडिबल डिवाइसेस, जो इनोवेटिव मेडटेक के जरिए हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बना रहा है।
2: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
3: हमारे इनोवेटर्स ने दिखा दिया कि इनोवेशंस के लिए हमेशा हाईटेक फॉरेन लैब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी असली सॉल्यूशंस तो हमारे देश की मिट्टी और ग्रास रूट की तकलीफों से भी मिल जाते हैं। हमारे मेंटोर्स के सारे स्कोर्स अब हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में जा चुके हैं। इस वॉल्ट में सिर्फ स्कोर्स और नंबर्स नहीं है दोस्तों, इसमें है भारत के कोने कोने से आए सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स की उम्मीद और सपने। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे इनोवेटर्स में से किसे मिलेगा कैश प्राइज और खुद गौतम अदानी जी से मिलने का मौका, जल्दी पता चल जाएगा। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं भारत के नए कल में।

0: सर बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं?
1: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफी लोग मेरे को पकड़ते हैं, इससे मैं ऑनलाइन ही तुम्हें पकड़
0: लेता। ऑलराइट, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन की। सो विनर ऑफ वंदे भारतम, उनका नाम है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: See, when leaders, you know, they cross the table, you cannot actually say that whether the mandate has also followed them.
1: अरे सर, बट आपके नाम पे वोट दिया था ना, आपके नाम पे वोट दिया था, लोगों ने ट्रस्ट करके दिया था. नाउ दे हैव गॉन एंड सैट विद द बीजेपी, व्हाई शुड दे ट्रस्ट यू अगेन?
0: मैं उसी पे आ रहा हूँ.
1: अब जब फिरहाद हकीम ही चले गए तो बचा क्या?
0: दैट ओनली, आई एम कमिंग टू दैट ओनली. नहीं पद्मज, आई एम कमिंग टू दैट ओनली. देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी आर मैच्योर्ड इनफ, यू हैव सीन इनफ ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री. आई डोंट थिंक दैट आई एम अ पर्सन हु कैन एक्चुअली शो यू समथिंग न्यू ओवर हियर. एंड स्पेशली इट्स योर चैनल, यू जस्ट हर्ड व्हाट यू नो शुभेंदु अधिकारी सेड. नोबडी अटर्ड अ वर्ड. यू आर हैविंग अ सीनियर जर्नलिस्ट सिट ओवर हियर, ही नेवर सेड दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैकमेल. व्हेन यू चोजन चीफ मिनिस्टर कम्स इन बिटवीन द पब्लिक एंड सेज दैट डू यू वॉन्ट माई, आप मेरा साथ चाहते हैं कि नहीं, दैट इज द ट्रांसलेशन. प्लीज आस्क देम टू ट्रांसलेट. इज दैट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी यू थिंक इट इज? इज दैट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ कैंपेनिंग? यू आर सेइंग दैट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, वी आर इन द पावर, यू आर गोइंग टू स्टैंड विद अस और नॉट, बिकॉज इन एनी केस वी आर गोइंग टू विन.
1: ओके, आई विल आस्क शत्रुपा दैट, बट ये तो बता दीजिए मिस्टर भट्टाचार्य, व्हाई शुड एनी मुस्लिम ट्रस्ट यू टुडे इफ योर एमएलएज एंड एमपीज आर विलिंग टू डू बिजनेस विद द बीजेपी? द होल आइडिया वाज टू अपोज द बीजेपी. दैट इज व्हाट यू हैड सेड व्हेन यू हैड गॉन एंड आस्क्ड फॉर वोट्स फॉर यूसुफ पठान, व्हेन यू हैड गॉन टू कोलकाता पोर्ट एंड आस्क्ड फॉर यू नो वोट्स फॉर फिरहाद हकीम. They were there to oppose the BJP. Now they're sitting with the BJP. Exactly. At least Rahul Gandhi today is saying, I'm going to fight BJP till kingdom come.
0: Padmaja, that is the point. Don't say that we were expecting them to give us a walkover. If Congress would have, you know, left the seat for us, that doesn't mean that you are giving a walkover. It was only that we could have fought BJP overhead at this particular time when BJP has actually occupied the opposition as well.
1: Are your MLAs are sitting with the BJP? How will you fight the BJP? That is what Rohan Mitra is saying. Why should Congress and voters trust you to fight the BJP when they are in love with the BJP? They are waiting for BJP's call. They are waiting for Dr. Shatrupa to make them that call.
0: And the reason